0: पासा ढलिए पिछलाए उपर घालिए उपर घालिए घालिए
1: ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉਹ

0: पौड़ी वड्डी होंडा या पार तेरा मर्तबा रंग परंगन एक ना जापन करतबा जिया अंदर जिए सबके जान ला सबके तेरे वास तेरा घर भला तेरा कर आनंद वधाई तो दकार मान माता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दा संदास तुद अगे बिनवता
1: ਸਲੋਕ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद चक चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभाव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिजैन त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत आप नारायण कलातार जग मह परवर निरंकार आकार ज्योत जग मंडल कर जह कह तह पारपूर शब्द दीपक दीपायाओ जह सिख संग्रह तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम करे अपने चेरे लिख कत ना छूटिया खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखस लै नानक पार उतार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटियन तोद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटियन सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोहिया सवना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोहिया सवना दावे जिस पास

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाण जो सेवह सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुगमह सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आद पुरख या परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एहे सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पांक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਹੈ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवी कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कांता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा।

कष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ षाढ़ कै।

आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनोह बसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै। घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावै। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ

दर्शन स्नान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मत

ज्योत रूप हर्याप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो फिरत फिरत प्रव आय परया तो शरणाय नानक की प्रव बेनती अपनी भगती लाय मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्वास ना परिया रे दर्शन प्यासी दिन सरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुख टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। रहाउ जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थार, बिच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। हर आपे पंच तत् विस्थार, बिच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर।

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीखिया पाए, रहाओ केसर कोसम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत नेही, सर्ब परमल करना, के पट भांडा कह न कोए,

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर

नच नच हसे चले से रोए, उड़ ना जाही सिद्ध ना होए, नचन कुदन मलका चाओ, नचन कुद

0: काया कायाकार सतिया मन संतोख उपज देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खारा बावेकार एक होंदा खाए चले था उतना पिकाई कार जल थल जिया प्रिया लोआया काराया कार ओए जे आखे सो तू है जन तिना पितेरी सार नानक भगता पुख सलान सच नाम धार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार घड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार

पौड़ी सच्चा साहिब एक पूजन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिले सच तही सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का हे आया।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते यार जा, पढ़िए जेते सास। नानक लिख है एक गल होर होमें चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया, बहु तीर्थ भव्या ते तुलव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया, साध गवाया, बहु दुख पाया, दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे एह निस्कहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पग उपेताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्खन दे पत गवाई, बिन नावे किश थाए ना पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसानी, अंद ना जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नहे केवल, हौमै शब्द जलाए पौड़ी।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैंदनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप पार।

0: शेर गवाही है, शेर गवाही है, शेर गवाही है।
1: ओड़ी दान मेहंदाता लिखा जे मिलता मस्तक लाई है। कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग के आई है। फालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे हो वे पूर्व लिखा ता धूड़ तिना दी पाई है। मात थोड़ी सेव गवाई है, मात थोड़ी सेव गवाई।

0: अग्गे मारिए अग्गे मारिए अग्गे मारिए
1: पौड़ी पड़े हुए गुनेगार तो मी साधना मारिए जेहा काले कलना ते वे हो नौ पचारी है ऐसी कलना खेडी है जित दरगह गया हारी है पड़े आते हूँ मैं विचार अग्गे विचारी है मुहे चले सो गए मारी है मुहे चले सो गए मारी है।

कच्चो कंचन पयो सबद गुर सरना सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पनयो लोहयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारा पाहन मानक करा ज्ञान गुर कहो विचारा काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसया से पस परेत सुर नर पए।

चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपे नाम नव निध अपे रसन ऐ नस रस है सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याइए अन्न मार्ग तजहो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदर हो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तुम वंशवो गुरु गुर।

0: गुण जान निदान हर मन थरो ध्यान अहनिस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल आथा हा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत ले बलाइए फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइए अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए नाम निर्वाण निदान हर उर धरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए।
1: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जा की सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुरु बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरो प्रहलाद गुर मिरत मुन जन रे तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरै एक नाम रग

सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हो बरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज बिकार मन गय अंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो हमें।

सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जानम जानम दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बहठिया सोहिया, सबना दावे साहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बहठिया सोहिया, सबना दावे साहु, सबना

तिन साधु चरण ना सेवे कबहू। तिन सब जन्म अकथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफलो जन्म सनाथा, मोका की जदास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा,

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत सरी महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हीरा रतन नाम हर बसया। गुर हाथ धरयो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लत

पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता सहकार कराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने हवे परवानता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैदा जाए सी तां दरगह पैदा जाए सी।

पौड़ी जितना अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याइया आपे ही करम कराएंदा वड हो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधा लाएंदा नदर उपटी जय करे सुल्ताना कहु कराएंदा धर्मगन पिख ना पाएंदा धर्मगन पिख ना।